0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर FM, द टाइम इज नाउ 6 o'clock।

0: जब भी आपके दरवाजे पे कोई दस्तक हो तो छोटे बच्चों को दरवाजा खोलने से मना करें और खुद भी दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: Inspired. Inspire FM.
2: I have wisdom.

0: एक्शन कमेटी की जानब से रावलाकोट में एहतजाजी धरना जारी है। पुलिस और हुकूमत ने कालादम जमात के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई के अज़म का इजहार किया है, ताहम ओवरसीज कश्मीरियों ने मसाइल को बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान के प्रोविजन पंजाब के शहर लाहौर में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 10 अफराद जां बहक हो गए जबकि 3 अफराद जख्मी हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। दूसरी जानब फैसलाबाद में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जां बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। स्कॉटलैंड में लेबर पार्टी के रहनुमा अन सर्वर ने बरतानिया के नए प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नम की गवर्नमेंट में बिजनेस मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया। अन सर्वर स्कॉटिश पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफा देकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन भी बन गए। अन सर्वर साबिक गवर्नर पंजाब और बरतानिया के पहले मुसलमान रुकन पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद सर्वर के साहबजादे हैं। सामीन, ये थी इस वक्त तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.
3: This audio is brought to you by MuslimCentral.com.
4: How do I hold on to hope and positivity when the world feels so broken?
5: Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. That whoever turns their back on my remembrance, Allah says, on the remembrance of Allah, whoever turns their back on Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, that person will have a miserable life. The world is full of struggle. The world is full of tragedy. The world is full of difficulty. That's the way Allah created it. Allah did not create this world to be a paradise. If we are waiting, if we're expecting for the world to be a really comfortable, nice place where nothing bad happens to anybody, then we're going to be sorely disappointed. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. The hereafter is that place. Jannah is that place. That's why we work towards that. Wallahu yad'u ila dar as-salam. Allah calls us to the place of eternal, absolute peace. So this world is always going to have difficulty and tragedy. That's not new. However, how do we not let that result in becoming negative and not allow our hearts to become full of despair and negativity? How do we remain positive, hopeful, upbeat? Number one, we have to be connected to Allah. The remembrance of Allah. That's why كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ. No one struggled and suffered more than the Prophet صلى الله عليه وسلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم said that لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ أَحَدٌ. I have been hurt more than anyone ever has. And I have been threatened more than anyone else ever has. But how did he remain so upbeat, sallallahu alayhi wa sallam? كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ. He was always engaged in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And he taught us to do the same. And he congratulated people when they did that and he encouraged them. And I'll share a quick little example here. This is one of my favorite narrations. مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِعَرَابِيٍ وَهُوَ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ. The Prophet صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ passed by a Bedouin man and he was making dua in his prayer. And he was saying, يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونَ. Oh, the one who eyes cannot behold in this world. وَلَا تُخَلِّتُهُ الذُّنُونَ. Minds cannot comprehend his greatness. وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ. People cannot praise him as he deserves to be praised. وَلَا تُغَيِّرُوا الْحَوَادِثِ. The events of the world do not change him. وَلَا يَخْشَ الدَّوَائِرِ He does not fear the passing of time.

0: Broadcasting on 105.1 FM and around the world at www.inspirefm.org. Inspire FM.
1: आप लुटन से समात फरमा रहे हैं। Inspire FM 105.1.

0: ये कुछ के हाँ इमाम शाफी के हाँ और कुछ और के हाँ ये सजदे की आयत है, एहतियातन हम नमाज की ब्रेक में या अगली ब्रेक में आप लोग सजदा कर लेना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकू वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफअलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। रुकू करो अहले ईमान, रुकू करो, सजदा करो, अल्लाह की इबादत अपने रब की इबादत करो और अच्छे काम करो। चार चीज़ें कही हैं, रुकू, फिर सजदा, फिर अल्लाह की इबादत और फिर अच्छे काम। ये भी एक बड़ी फलसफी तरतीब है। रुकू, जब आप आंखों से देखते हो रुकू तो इंसान आधा झुक गया है, जब आप सजदा देखते हो तो वो पूरा झुक गया है, यही बात है ना। तो एक तरह से एक तरतीब है कि अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि अपने अल्लाह ताला के सामने जब हम अपने आप को पेश करते हैं तो उसमें भी मराहिल होते हैं, यानी इंसान 100% एकदम से नहीं पहुंच जाता, उसको लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ जाओगे। तो नमाज में भी वो मराहिल सिखा दिए, पहले इंसान खड़ा है, फिर आधा झुका, फिर पूरा झुका। और इसी तरह हम जब अल्लाह ताला की इताअत की तरफ आते हैं तो इसमें स्टेजेस होती हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इताअत की तरफ आते हैं। और ये यही दर्स नमाज की हरकात में से बहुत सारे दुरूस में से एक दर्स ये भी है। तो ये तो आ गया इरकाउ वस्जुदू, लेकिन हम अगर रुकू और सजदे को मिलाएं तो यही तो असल इबादत है नमाज। लेकिन फिर उसके बाद किस चीज़ का जिक्र किया, वअबुदू रब्बकुम, लेकिन पहली दो बातें तो पहले ही इबादत थी, तो फिर इसके बाद इबादत का जिक्र करने की क्या हिकमत हो सकती है। उसके बहुत सारे जवाहिर में से एक छोटा सा मोती ये है कि यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं कि अब जो तुमने सबसे आला इबादत कर ली ना, अब तुम बाकी जिंदगी में मेरी इबादत के लिए तैयार हो, अब इबादत शुरू होगी। रुकू और सजदा असल इबादत के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। यानी नमाज का टाइम हुआ, जोहर का टाइम हुआ, जाके मैंने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद मैं वापस ऑफिस के काम पे लग गया, ऑफिस के काम पे किसी की गीबत हो रही है, ऑफिस के काम पे को कह रहा है जी आप बस ये कह दें कि डेडलाइन परसों है, हम सबको पता है आज है, लेकिन आप डेट चेंज कर दें मेरे लिए प्लीज़, अब बस भेज दें, खैर है। किसी की कॉल आ रही है, उनको बता दो मैं ऑफिस में नहीं हूँ, वो कह रहे हैं कि वो ऑफिस में नहीं है। ये क्या है, ये अल्लाह ताला से इबादत नहीं है। इबादत का मकसद है कि जो हिदायत, जैसे नमाज में अल्लाह ने हिदायत दी है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं, अल्लाह ताला हिदायत देते हैं रुकू में जाओ, रुकू में जाते हैं, अल्लाह कहते हैं पूरे गिर जाओ, पूरे गिर जाते हैं, जब खड़े होने का वक्त तो खड़े होने का वक्त, हर हरकत को कंट्रोल किया जा रहा है, आंखें कहाँ जानी है उनको कंट्रोल किया जा रहा है, सलाम किस तरफ करना है, पहले किधर करना है, पहले किधर करना है कंट्रोल किया जा रहा है, आपके अल्फाज को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी आप मुजाहरा करते हैं कि अल्लाह जो जो इंस्ट्रक्शन जो हुक्म मुझे देगा 100% मैं उस पर अमल करूंगा, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे मैं करूंगा, मैं पूरी तरह अल्लाह ताला की इताअत करने के लायक हूं, मैं उसकी सलाहियत रखता हूं। और सब इकट्ठे वो हम करते हैं जमात से, यानी हम में से किसी में फ़र्क नहीं है, जो अल्लाह कह रहा है वो हम एग्जैक्टली कर रहे हैं, अपने जिस्म को हम सरेंडर कर देते हैं। आपको कॉल आ रही है उसके दरमियान, आपको आपका बॉस बुला रहा है, आपको कोई आपका फेवरेट मैच लगा हुआ है, आप खड़े हुए हो नमाज में, कोई आउट हो गया तो आप ये नहीं कहते ओए ओ यार अल्लाह अकबर, नहीं करता कोई भी, आप खड़े रहते हो नमाज में, आपकी ट्रेनिंग ऐसी है। तो नमाज क्या सिखा रही है कि अल्लाह ताला की जब इताअत होती है तो वो मुकम्मल होती है। अब जिंदगी में क्या होता है, कुछ मामलात में अल्लाह आपको कुछ ज़्यादा छुट्टी देता है, आप खड़े हो, कुछ मामलात में अल्लाह ने ज़्यादा मुतालबा किया है, जैसे क्या है रुकू, कुछ मामलात में अल्लाह ने बहुत ज़्यादा मुतालबा किया है जैसे सजदा, आंखें कुछ अब सजदा करता है ना इंसान, देखिए जब इंसान क़याम में खड़ा होता है ना तो अल्लाह ने हमारी आंखें ऐसे नहीं बनाई कि अगर आपने जायनमाज बिछाई हुई है तो आपको सिर्फ ये मुरब्बा नज़र आ रहा है, अगर कोई बच्चा भागता हुआ जाएगा तो आपको वो भी नज़र आ जाएगा, ऐसी बात है ना। लेकिन जब आप रुकू करेंगे तो आपके आपके नज़र के दायरे में कमी हुई कि नहीं, कमी आ गई ना, जब सजदे में गए तो नज़र कहाँ तक जाती है, बिल्कुल नहीं जाती, बिल्कुल आपका दायरा बंद हो जाता है। कुछ मामलात में औरों का अमल दखल है हमारी इबादत में और हमारी इताअत में, और लोग भी शामिल आ जाते हैं, लेकिन आपको उसको बर्दाश्त करके फोकस करना पड़ेगा, कुछ मामलात ज़्यादा ज़्यादा फोकस, और कुछ मामलात में किसी का कोई अमल दखल नहीं, वो बस आप खुद करो। उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अल्लाह ताला के लिए पढ़ा रहा हूँ तो ये इबादत है कि नहीं, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग कुछ सीख रहे हो, ये भी इबादत है कि नहीं, लेकिन इस इबादत में एक सोशल एलिमेंट भी है, हंसी मजाक भी है, हम एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, कोई कोई तारीफ भी कर दे, कोई फोटोज भी खींच ले, कुछ और भी कर ले, यह है कि नहीं? तो इसमें हमारे फोकस में इधर उधर बात हो सकती है कि नहीं? हो तो सकती है ना। तो इस फोकस के इधर उधर होने के बावजूद इंसान अपने आप को सीधा रखे, ठीक है वो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, लेकिन इंसान अपने आप को दोबारा फोकस पर लाता रहे, यही बात है ना। इसके मुकाबले में अगर जब हम नमाज पढ़ते हैं या किरात करते हैं कुरान की घर में बैठे हुए, या तहज्जुद पढ़ते हैं, तो उसमें किसी और का अमल दखल है? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला हमें तैयार कर रहा है कि हर तरह की सूरत हाल का हमें सामना करना है। अगर अल्लाह ताला चाहते ना कि हम दुनिया को छोड़ के बस अल्लाह की इबादत करें, तो शायद जिस तरह बुद्धिस्ट होते हैं या हिंदू होते हैं या और मजाहब होते हैं, जो आंखें बंद करके पहाड़ पे कहीं जाके बाकी सबसे दूर होके 6-6 घंटे बैठे रहते हैं ताकि वो कॉन्सेंट्रेट कर सकें। लोगों ने तो मुझसे आके ये भी पूछा है कि नमाज में आंखें बंद करके नमाज पढ़ने तो जरा कॉन्सेंट्रेशन आसान नहीं हो जाएगी, क्योंकि जब आंखें खोल के नमाज पढ़ते हैं तो आपका छोटा बच्चा है वो नीचे से आके आप कहते हैं आप नमाज पढ़ रहे हो, जिसे आपको घूर रहे हैं आप नमाज, और ये ऐसा नहीं कर सकते कहीं किसी दूर कोने में किसी पहाड़ी पर जाके कहीं जाके, या अगर अल्लाह अगर आप इजाजत दे दो मैं गाड़ी में जाके दरवाजे बंद करके सारे गाड़ी के फिर मैं नमाज पढ़ा करूं, या नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स लगा के मैं नमाज पढ़ा करूं, तब बाकी बाहर की आवाज़ ना। अल्लाह ताला ने हमें नमाज का हुक्म दिया, कोई मछेरा था उसने किश्ती पर खड़े होकर नमाज पढ़नी है, कोई किसान है उसने खेत में खड़े होकर नमाज पढ़नी है, कोई मजदूर है उसने मजदूरी में नमाज, कोई जंग के मैदान में उसने जंग के मैदान में नमाज पढ़नी है। यानी नमाज का जो ये सिलसिला है वो दुनिया को छोड़ के है, दुनिया के साथ ही चल रहा है, दुनिया के साथ। मैं जब मैं न्यूयॉर्क में होता था, न्यूयॉर्क में क्योंकि रियल इस्टेट बहुत महंगी है, तो वहाँ पर जो रेस्टोरेंट खोलना होगा न्यूयॉर्क सिटी में तो वो तो ख्वाबों की बात है, बहुत ही महंगा है। तो वहाँ पर उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स बनाए हुए, वो ठेला लेके वो चलते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है कि इस सड़क के इस कोने पे आपके पास लाइसेंस है, यहाँ पे आप बेच सकते हो। वो बहुत सारे हलाल वेंडर्स बने हुए हैं जगह जगह, हलाल हॉट डॉग्स, हलाल चिकन एंड राइस वगैरह वगैरह, तो वो सड़क पे लाखों की लोग गुजर रहे हैं, लोग उससे ख़रीद रहे हैं। तो नमाज का टाइम आता है तो वो क्या करता है बेचने वाला, वहीं पे उसने फुटपाथ पे जायनमाज लगाई, आगे गैस की टंकी रखी, वहीं वो खड़ा नमाज पढ़ रहा है टाइम स्क्वायर के दरमियान में, इधर से उधर लोग गुजर रहे हैं और वो वहाँ खड़ा नमाज पढ़ रहा है। अब शोर है, शोर तो है, गाना बजाना है बिल्कुल है, गाड़ियों की आवाज़ है बिल्कुल है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कोई बेहूदा बातें भी कर रहे हैं, वो सब कुछ है, लेकिन वो नमाज पढ़ रहा है, लोग ट्रेन स्टेशन में नमाज पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हमें इस दुनिया का सामना करना है और फिर भी इबादत करनी है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है हमें। तो जब ये कहा है ना वअबुदु रब्बकुम, अपने रब को मद्देनजर रखो, उसकी इबादत करो, ठीक है दुनिया का तो तुम्हें सामना करना ही है। तो ये ज़हनियत अल्लाह ताला ने हमारे दिलों से हमारे दिमाग से निकाल दी कि नहीं जी मुझे दुनिया से हट के मुझे दीन की खिदमत करनी है। ओ इंसान, हमारा दीन क्या है कि हम दुनिया का सामना करते हैं और दुनिया का सामना करते हुए हम दीन की खिदमत करते हैं, दुनिया से भाग के नहीं, दुनिया से हट के नहीं, दुनिया में रहते हुए दुनिया को एंगेज करते हुए। ये दीन तिजारत में गया, ये दीन सफ़र में लेके हम जाते हैं, ये दीन हम हर दुनिया के हर शोबे में हम इस दीन को साथ लेके जाते हैं, हम दुनिया के शोबों से भागते नहीं, उनको फेस करते। लेकिन ये सब है कमिटमेंट हमारी अल्लाह ताला के साथ। उसके बाद एक आखिरी तरतीब में डाला वफ़ालुल खैर, और खैर किया करो, अल खैर करो। तो सवाल पैदा होता है कि पहले कहा था रुकू करो, वो खैर नहीं है? फिर कहा था सजदा करो, वो भी तो खैर है? फिर कहा था इबादत करो अपने रब की, वो भी तो खैर है? और अब क्या क्या कह रहे हैं, और अल खैर करो, खैर अल खैर करो। तो इससे मुराद ये है कि इन सब के बाद एक और मरहला भी है, और वो है सबसे बेहतरीन करने का काम, सबसे बेहतर अल खैर। खैर अरबी में कहते हैं अच्छे काम को, अल खैर कहते हैं बेहतरीन काम को, शर कहते हैं बुरे काम को, अशर कहते हैं सबसे बदतरीन काम को। इसी तरह अस्मा तफदील में होता है अहसन बेहतर है, और अल अहसन बेहतरीन है, अकबर ज़्यादा बड़ा है, और अल अकबर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर अल खैर से सबसे बेहतरीन काम करो, और सबसे बेहतरीन में बहुत सारे उलमा ने इस पर बहुत तदब्बुर किया कि ये क्या बात कही जा रही है।
1: और उसमें बहुत सारी राय है। जो एक राय मेरे दिल को लगती है औरों का मैं इनकार नहीं करता, वो ये भी है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की इबादत और खिदमत खल्क दोनों को मिलाकर बेहतरीन, यानी दोनों तरफ, एक तरफ आप एक नज़र आपकी इंसानियत की भलाई की तरफ है, उसमें दावत का भी काम है, उसमें इंसान की इस्लाह का भी काम है, उसमें फलाह का भी काम है, रिलीफ का भी काम है, तामीर का भी काम है, वो सारी चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की इबादत भी है। अब ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई तो एक क्लाइमैक्स तक आ गई ये बात, इरकाउ वस्जुदु वअबुदु रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह तक पहुँच जाओ। वल्लज़ी खलक़कुम फ़मिनकुम काफ़िर वमिनकुम मुमिन, उसने तुम्हें बनाया और तुम में से काफिर भी हैं और तुम में से मोमिन भी हैं। और ये असल में एक दो हकीकतें हैं, दो मुतजाद हकीकतें हैं जो कुरान ने बयान की हैं। इंसान की असल है नूर, इंसान की असल है नूर, लेकिन इंसान की तारीख में असल ट्रेजेडी है कि अक्सरियत किस तरफ गई, कुफर की तरफ। इंसान की तारीख में हकीकत में, यानी सलाहियत एक और चीज़ होती है और जो हुआ हकीकत में वो और चीज़ होती है।

नहीं होता जब सुस्ती हो साथ में। इसी तरह इंसानियत को सलाहियत तो दी गई हिदायत पर रहने की, हिदायत पर जीने की, लेकिन हमने इस मामले में सुस्ती दिखाई, यू नो कुव्वत इरादा नहीं दिखाई। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो अक्सरियत है उसका जिक्र पहले किया और कहा फमिनकुम काफिर वमिनकुम मोमिन। और ये हकीकत भी थी उस वक्त की कि जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, उसने तुम सबको बनाया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑडियंस में अक्सरियत किन की थी, कुफार की या अहले ईमान की? कुफार की। फमिनकुम काफिर वमिनकुम मोमिन, वल्लाहु बिमा तअमलूना, वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا, हमने किताब विरासत में दी उन लोगों को जिनको हमने खास चुना था हमारे बंदों में से। فمنهم ظالم لنفسه, तो जिन उम्मतों को चुना, जिन अहले ईमान को चुना, उनमें से भी बाद में, यानी मुसलमान होने के बाद भी ऐसे निकले जिन्होंने अपने साथ जुल्म किया। ظالم لنفسه यानी मुसलमान होने के बावजूद गुनाहगार होना, उनका पहले जिक्र। फिर कहा منهم مقتصد, और उनमें से जो वो हैं जो एतदाल की राह लेते हैं, दरमियानी राह। मुक्तसिद, मुक्तसिद इसको भी कहते हैं जो इरादे का पक्का हो। मुक्तसिद उसको भी कहते हैं जो अदल व इंसाफ करे। अब अंदाज़ा करें गुनाह करने वाले ज़्यादा हैं या इंसाफ करने वाले ज़्यादा हैं? गुनाह करने वाले ज़्यादा, उससे कम कौन? इंसाफ करने वाले। और फिर आखिर में वमिनहुम साबिकुन बिलखैरात, और उनमें से वो भी हैं जो खैर के अच्छे कामों में औरों से आके निकल जाते हैं, जो खुद ही से मोटिवेटेड होते हैं, जिनकी हम पहले बात कर रहे थे ना, मिनहुम साबिकुन बिलखैरात, वो सबसे कम तादाद में हैं। तो ज्यादा से कम की तरफ एक सीक्वेंस जा रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी थी। दो जुर्म हैं जिसमें अल्लाह ताला ने एक तरतीब, एक के लिए एक तरतीब, दूसरे के लिए उसकी मुतजाद तरतीब इस्तेमाल की है। चोर के बारे में कहा है कि मर्द चोर और औरत चोर, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तअउ अयदीहुमा, उनका हाथ काटो, वस्सारिकु वस्सारिकतु। ठीक है, सूरतुन नूर में अल्लाह ताला ने जिना के बारे में कहा है वज़ानियतु वज़ानी, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द। तो जब चोरी की बात की तो किसका जिक्र पहले है? मर्द का, फिर औरत का। और जब जिना की बात की तो किसका जिक्र पहले है? औरत का और फिर मर्द का। इस पर हमारे उलमा के बहुत सारे तबसरे थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं इसमें कोई रिसर्च भी करूं इन दो जुर्मों के बारे में। तो मेरी मुलाकात हुई एक दफ़ा एक क्रिमिनोलॉजिस्ट से, जो क्रिमिनल बिहेवियर को पढ़ते हैं, क्राइम को स्टडी करते हैं, जुर्म को स्टडी करते हैं, उसकी डेटा एनालिसिस करते हैं, उसकी स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थी, उन्होंने अमेरिका में क्राइम को पढ़ा था पिछले 70 साल, पिछले 70 साल का डेटा क्राइम का, कि मुख्तलिफ किस्म के क्राइम जैसे कार जैकिंग है, या होम इन्वेजन है, या किसी ने जो है वो पिक पॉकेटिंग है, किसी ने जो जेब कतराना होता है वो है, फिर प्रोस्टिट्यूशन है, इस तरह के जुर्म ना। तो वो एक सेमिनार में थी मेरे, वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, और जो अकवाल हैं उलमा के मैं वो शेयर कर रहा था। आज मैं उनकी बात आपसे शेयर करता हूँ। सेमिनार के पास वो मेरे पास आती हैं, मुझे अपनी टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक पढ़ाती यूनिवर्सिटी में, वो टेक्स्ट बुक खोल के उन्होंने मुझे दिखाई अमेरिकन क्राइम स्टेटिस्टिक्स की, और कहती हैं कि जो रॉबरी और स्टीलिंग, होम इन्वेजन, इस किस्म के स्टीलिंग वाले, चोरी वाले काम, उसमें 98% मर्द हैं, 98% मर्द हैं और 2% औरतें। और उसमें भी लोगों ने बहुत एनालिसिस किया है ऐसा क्यों है। वो क्यों है? क्योंकि उसमें पकड़े जाने का रिस्क ज़्यादा है, फिज़िकल हार्म का रिस्क ज़्यादा है, और मेन जो है वो फिज़िकल रिस्क ज़्यादा लेते हैं। दूसरी तरफ प्रोस्टिट्यूशन से मुतालिक केसेस में 96-97% कौन है? फीमेल्स हैं जो अरेस्ट होती हैं, जिनको पकड़ा जाता है। वो ज़ानियत हो जानी, हमारे उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द को और औरत को दो मुख्तलिफ किस्म की ताकतें दी हैं। इंसान को, मर्द को फिजिकल ताकत दी है और औरत को जज्बाती ताकत दी है, वो साइकोलॉजिकली उसको पावर दी है, कंट्रोल करने की पावर दी है, सड्यूस करने की पावर दी है, अट्रैक्ट करने की पावर दी है। तो इन दोनों पावर्स का जो गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज्यादा सलाहियत है उसका वो ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। वैसे तो दोनों के पास दो तरह की सलाहियत हो सकती है,

0: Azad.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
3: Last time on Akhri Mojza.
4: Hamare ulama kehte hain ki Allah Taala ne mard ko aur aurat ko do mukhtalif qisam ki taqatein di hain. Insaan ko mard ko physical taqat di hai aur aurat ko jazbati taqat di hai. Wo psychologically usko power di hai, control karne ki power di hai, seduce karne ki power di hai, attract karne ki power di hai. तो इन दोनों पावर्स का जो गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज़्यादा सलाहियत है उसका वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है. वैसे तो दोनों के पास दो तरह की सलाहियत हो सकती है, बट दिस इज़ अ स्टैटिस्टिकल रियलिटी. वसारिकु वसारिकतु वज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिद मिन्हुमा मिआ जल्दा. ओके,

0: यहां पर इस मिसाल के लिए आपको थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, लेकिन ये मेरे नज़दीक ये इस किस्म की मिसालें होती हैं जो जब मैं पहले पढ़ रहा था ना, तो इनसे मैं सबसे ज्यादा जो मुतासिर होता था इन मिसालों से होता था कि ये कैसे मुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसको पहले मैं समझाता हूं यहां बात क्या की जा रही है। यहां पर है वलौ युअज्जिलुल्लाह, एक्चुअली नो, मैं बताता हूं यहां पर وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ پہلے اس پوری کا سمجھ لیتے ہیں ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اگر جلدی کرتا، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے لیے جلدی کر دیتا شر کی، شر سے مراد ہے نقصان کی، یہاں پر نقصان مراد ہے، استعجالهم بالخير، کیونکہ وہ جلدی چاہ رہے ہیں اچھائی کی، یعنی انسان اچھے کی جلدی میں جب حرکت کرتا ہے، جلد بازی میں حرکت کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس کے لیے؟ نقصان۔ اگر اللہ یہ اجازت دے دیتا کہ ایسا تم کر لو اور اپنا نقصان ہو بھی تو کر لو، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا معاملہ طے کیا جا چکا ہوتا، یعنی انسانیت ہی ختم ہو جاتی۔ اگر اللہ انسانیت کو اپنی جلد بازی کرنے کی پوری کھلی چھٹی دے دیتا تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم ان ایسے لوگوں کو جن کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملیں گے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی بغاوت میں، اور وہ اندھے ہی اسی بغاوت میں چلتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مشکل یا کوئی مصیبت آ کر لگتی ہے، اس کو چھوتی ہے، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، پھر وہ ہمیں دعائیں کرنے لگتا ہے لیٹا ہوا اپنی سائٹ پہ، یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا، یعنی ہر حال میں دعائیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے اس کی مشکل کو ہٹا دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسه، تو ایسے چلتا پھرتا ہے جیسے کبھی کوئی مصیبت تھی ہی نہیں جس نے اسے چھوا تھا۔ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اور اسی طرح مصرفین کے لیے، مصرف کہتے ہیں جو حد سے زیادہ گزر جائے، حد سے زیادہ گزرنے والوں کے لیے، اسراف کرنے والوں کے لیے، ہم نے ان کی حرکتوں کو مزین بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ قل، یہاں پر فوکس کرنا ہے اب ہمیں، قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا، کہہ دو ان سے میں، مجھے کوئی اقتدار نہیں ہے، رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول ان کو بتا دیجئے مجھے کوئی اقتدار نہیں ہے کہ میں تمہارے معاملے میں نہ کوئی نقصان نہ کوئی نفع کنٹرول کر سکوں، میرے ہاتھ میں تو یہ ہے نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کی کہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے۔ سوال میرا، جو فوکس میں نے آپ سے کروانا ہے اس آیت میں، یہ آیت نمبر 49، ہاں، اس آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، نقصان پہلے یا فائدہ پہلے؟ نقصان پہلے، ضرًا ولا نفع، نفع کا لفظ آسان ہے، ضر کا لفظ نقصان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب واپس آئیں گے اس کی طرف ایک لمحے بعد، ادھر دیکھ لیں، یہاں دوسری آیت کو دیکھ لیں، فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اس دن قیامت کے دن تم لوگ ایک دوسرے کے معاملے میں کوئی اقتدار نہیں رکھو گے، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ یہاں کس چیز کا پہلے ذکر ہے؟ یہاں نفع کا پہلا ذکر ہے، وہاں پر نقصان کا پہلے ذکر تھا۔ تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تھا قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے پروئی ہوئی ہے، اور ایک سورت کا ایک مکمل نظام ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ سے کہتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو کتابی شکل میں نازل ہوا یا کلام کے طریقے سے نازل ہوا؟ کلام۔ میں آپ سے ابھی 40 منٹ 45 منٹ بات کرتا رہا ہوں، میں نے 2 منٹ پہلے کیا الفاظ کہے تھے، کسی کو یاد ہے؟ 30 سیکنڈ پہلے، 40 سیکنڈ، 5 منٹ پہلے کیا الفاظ کہے تھے، کسی کو یاد ہے؟ اگر میں نے لکھی ہوتی ای میل تو میں نے پیچھے کیا کہا تھا، آپ پیچھے جا کے سرچ تو کر سکتے ہو نا، لیکن اگر میں بول رہا ہوں تو तो हमारा दिमाग हिफ्ज नहीं कर लेता कि क्या कहा था, कैसे कहा था। कहानी आगे चलती रहती है, हम प्रोसेस करते रहते हैं, ये हिफ्ज थोड़ी है, मुसलसल आगे बात चल रही है। अब इस बात को सामने रख के ज़रा सोचना कि ये हो क्या रहा है। यहाँ 10वीं और 11वीं आयत में कहा था, अगर इंसान नुकसान की तरफ जल्दबाजी करे और अल्लाह उसको करने दे तो इंसानियत ख़त्म हो जाती। मज़मून क्या था शुरू में? नुकसान, नुकसान। कौन सी आयत में? 10वीं 11वीं आयत। फिर कहा था जब हम उसका नुकसान उससे हटा देते हैं तो वो ऐसा चलता फिरता जैसे उसको कोई नुकसान हुआ ही नहीं था। तो उसके 40 आयात बाद बात हो रही है, उनको बता दो मैं तुम्हारे मामले में ना किसी नुकसान का इक्तदार रखता हूं और ना नफे का। जहां बात शुरू हुई थी 40 आयात पहले, इस तरह कह लो 15 मिनट पहले जो बात कही जा रही थी, उसके उनके अल्फाज की तरतीब का लिहाज रखते हुए नफे का जिक्र पहले नहीं, किसका जिक्र पहले? नुकसान का। कितना मुमकिन है इंसान के लिए ये? अब आगे देखो इस सूरत में, सूरत सबा में कहते हैं यहां पर नफा पहले और नुकसान बाद में। सूरत में जरा पीछे जाओ क्या मिलेगा? इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु। मेरा रब जिसके लिए चाहे रिस्क के दरवाजे फैलाकर खोल देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। फैलाने का जिक्र पहले है कि तंग करने का? और फैलाने का ताल्लुक नफे से है और तंग करने का नुकसान से है। तो 3 आयात बाद नफान वाला दर्वन। अगर मैं बोल रहा हूं और मैं कहूं 2 मिनट पहले मैंने दिन रात कहा था तो मुझे अब रोशनी और अंधेरा कहना चाहिए, अंधेरा और रोशनी नहीं कहना चाहिए? मेरा दिमाग ऐसे चलता है? मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है कि मैं याद रखूं कि कौन सा लफ्ज मैंने किस तरतीब में कहा था। जब कलाम चल रहा है तो चल रहा है। देखो अगर इस बात का लिहाज रखना भी होता ना तो पहले ये चीज लिखनी पड़ती, फिर पीछे जाके चेक करना पड़ता ये क्या था, फिर आगे जाके फिक्स करना पड़ता। इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है। यहां तक कि किताबी शक्ल में लोग नहीं कर पाते, ये तो कलाम है। लेकिन कुतिल तुम बोला इन अली इमरान की 2 आयात उनमें तरतीब बदल दी। बोला इन कुतिल तुम फी सबील अल्लाही अव मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिन अल्लाही व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमाउन। अगर तुम लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते या तुम मर भी जाते तो कसम से अल्लाह ताला के इस तरह की तरफ से आने वाली मग़फ़िरत और रहमत बेहतर है उन तमाम चीज़ों से जो वो लोग जमा कर रहे हैं। पहले किस चीज़ का जिक्र है? कत्ल हो जाने का। दूसरे दर्जे में किस चीज़ का जिक्र है? मरने का। दूसरी उससे फौरन अगली आयत में वला हिम्मतुम औ कुतिलतुम लइलल्लाहि तुरजऊन तुहशरून। और अगर तुम मर भी गए या कत्ल कर दिए गए तो अल्लाह की तरफ तुम्हें दोबारा जमा कर दिया जाना है, लइलल्लाहि तुहशरून। पहली आयत और दूसरी आयत में तरतीब के फर्क को आप समझते हैं। पहली आयत में इजाफा था फी सबीलिल्लाह का। ये आयत, इन आयत का ताल्लुक है ग़ज़वा उहद से। सियाक इनका है ग़ज़वा उहद। उहद में कितने शहदा थे आप कुछ मालूम है? तकरीबन 70। रिवायत के मुताबिक 70 के लगभग शहदा थे हमारे उहद में। तो सबके जहन में क्या है? जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए और उस से एक दर्स अखज किया जा रहा है और हमें सिखाया जा रहा है। और अल्लाह कह रहे हैं वला इन कुतिल तुम फी सबील, अगर तुम भी मारे जाते हैं अल्लाह की राह में, तुम उन पर अफसोस कर रहे हो लेकिन अगर तुम भी मारे जाते हैं अल्लाह की राह में, या फिर अगर तुम मर जाते अल्लाह की राह में, मारे नहीं जाते मर जाते, यानी तुम अच्छे काम करते करते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाती और तुम्हें नेचुरल सी मौत आ जाती, बीमारी से मौत आ जाती या किसी एक्सीडेंट से मौत आ जाती, ऐसे जैसे मौत आती है वैसे मौत आ जाती, तो वो भी बेहतर था तुम्हारे लिए उन तमाम चीज़ों से जो वो लोग जमा कर रहे हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत इशारा है कि क्योंकि वहां पर हमें शिकस्त हुई थी तो दुश्मन माले गनीमत जमा कर रहा था, उसकी तरफ भी इशारा कर दिया कि देखो अगर तुम मर भी जाते ना और उस हालत में ना मरते तो ये मौत उनके जखीरे को जमा करने से बेहतर है। लेकिन उसके बाद अगली आयत में फी सबीलिल्लाह का जिक्र है, पहली में है दूसरी में नहीं है। तो इसको कहते हैं अल-इल्तिफात, इल्तिफात याद है, अल-इल्तिफात मिन अल-खास इलल-आम, खास से आम की तरफ इल्तिफात। पहली आयत में खास बात हो रही है आले इमरान के होने वाले से मुतालिक वाकये यानी उहद से मुतालिक। अब ये दर्स जो तुमने सीख लिया इसके बाद अब आम कायदे की तरफ आते हैं। आम कायदा सबके लिए, उहद हो या ना हो, जंग हुई हो या ना हो, हमारे यहाँ जो सहाबा का कत्लेआम हुआ है वो हुआ हो या ना हो, उससे अभी एक जनरल यूनिवर्सल बात हो रही है। कायदा कुल्लिया वो क्या है? वाला अच्छा, कायदा कुल्लिया में अक्सरियत इंसानियत की कत्ल की जाती है या मरती है? वो तो मौत असल है, कत्ल तो इस्तिस्ना है, कत्ल होता है लेकिन बदर्जा कम होता है। मौत तो हर रोज़ हर दफ़ा हो रही है। आप कभी हज उमरे पे जाने का आपको मौका मिले या मदीने में आपको नमाज पढ़ने का मौका मिले, हर नमाज के बाद क्या अनाउंसमेंट होती है? अस्सलातु अलल अमवात, अस्सलातु अलल अत्फाल, अस्सलातु अलल निसा, हर नमाज के बाद कोई ना कोई जनाजा निकल रहा है। तो मौत असल है। फिर कहा वला इन मुत्तुम औ कुतिल, और अगर तुम कत्ल हो भी जाते, यानी वो कम दर्जे में है अब, लेकिन फिर अल्फाज भी बदल दिए। पहली दफा कहा था कि जो कुछ वो जमा कर रहे हैं उससे बेहतर है ये तुम्हारे लिए, लेकिन यहां एक और लफ्ज, जमा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता था। यहां कहा जा सकता था यहां पर लइल्लाहि तुजमाउन, अल्लाह की तरफ जमा कर दिए जाओगे। क़यामत के दिनों में से जमा करने का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, यौम यजमाउकुम लियौमिल जमई, इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीही। आप अल्लाह को जमा करने, अल्लाह तआला से हम कहते हैं कि आप इंसानियत को जमा करने वाले हैं, उनके जामिन हैं उस दिन के लिए, उस दिन जिस दिन में कोई शक नहीं है। जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीही, लेकिन यहाँ युजमाउन के बजाय और तुजमाउन के बजाय तुहशरून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जमा और हशर में क्या फ़र्क है? जमा इंसान के लिए होता है और गैर इंसान के लिए भी होता है, लेकिन हशर असल में अरबी में जानवरों के लिए होता है। असल में जब भेड़ बकरियों को जमा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हशर, उसे हशर कहते हैं। जब घोड़ों को इकट्ठा किया जाता है तो वो क्या कर रहे हैं? हशर कर रहे हैं, जमा नहीं कर रहे, हशर। जब लोगों का मजमा है तो उसको क्या कहेंगे? जमा। तो जब इंसान जानवरों की तरह भाग भाग कर जमा किए जाएंगे तो वहां पर हशर का जिक्र है, और हशर के जिक्र से उसमें रहमत कम होती है। जमा के लफ्ज में रहमत ज्यादा है, हशर के जिक्र में रहमत कम है। और यहां पर देखें फी सबीलिल्लाह नहीं है ना, बोला इन मुत्तुम औ कुतिलतुम। अब यहां फी सबीलिल्लाह की बात नहीं हो रही, किसी भी तरह की मौत और किसी की तरह का भी कत्ल हो जाना। तो इसमें अच्छे लोग भी शामिल हैं और इसमें बुरे लोग भी शामिल हैं। मातू वहम कुफार, जो लोग मरे और काफ कुफर की हालत में थे, मातू वहम मुनाफिकून, मौत आई और वो निफाक की हालत में थे, ऐसे लोग भी हैं, अल्लाह हमें उनमें से ना बनाए। तो उनके लिए ज्यादा मौजू लफ्ज़ क्या था? इल्लाह ही तुहशरून, सुभान अल्लाह। ओफ, मैं जल्दी जल्दी तर्जुमा करूंगा, देखता हूं आप नोट करते हो कि नहीं। अपनी औलाद को कत्ल मत करना इमलाक की वजह से, इमलाक की वजह से, इमलाक कहते हैं इंग्लिश में, हम कहते हैं बैंक्रप्सी, फाके की वजह से। बहुत ही ज्यादा आपकी जो इक्तिसादी मुश्किल आ जाए ना, आप पर माशी मुश्किल आ जाए, उसको कहा जाता है अरबी में इमलाक। तो इमलाक की वजह से अपनी औलाद को कत्ल मत करना। फिर कहते हैं नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम हैं, हम ही हैं जो तुम्हें रिज़्क़ देते हैं और उन्हें भी देते हैं। एक और मकाम पर कहा सूरतुल इस्रा में वला तक्तुलु औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को इमलाक के डर से कत्ल मत करना। फिर कहा नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं तुम्हें भी देते हैं। कोई फ़र्क आया, तब्दीली, कोई तब्दीली आई? पहले रिस्क की बात की थी तो किसका रिस्क पहले कहा था? पहले तुम्हारा फिर बच्चों का। दूसरी आयत में किसका जिक्र पहले? बच्चों का रिस्क पहले, तुम्हारा रिस्क बाद में। अब इसको मैं समझाता हूँ क्या कैसे इसकी हिकमत को समझें। क्या अजीब कलाम है अल्लाह ताला का, सुभानअल्लाह। मुझे, मैं बर्गर खाने लगा हूँ भूख की वजह से, समझ में आती है बात? मैं बर्गर खाने लगा हूँ भूख की वजह से। अगर मैं कहूँ मैं बर्गर खाने लगा हूँ भूख के डर से, फर्क है कि नहीं? मैं अगर बर्गर खाऊं भूख की वजह से तो भूख अभी से है कि नहीं? अभी से है। मैं कहूं बर्गर खाने लगा हूं भूख के डर से, अभी नहीं है, अभी नहीं है, वो मुस्तकबिल में है, अभी नहीं आई। पहली आयत में है औलाद का कत्ल मत करना इमलाक की वजह से, इमलाक की वजह से। तो अभी भूखा कौन है? तुम खुद भूखे हो। जब तुम खुद भूखे हो, भूख की वजह से कत्ल करने का सोच रहे हो, तो कहा तुम्हें खिलाएंगे, उनको भी खिलाएंगे, तुम्हें खिलाएंगे। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। दूसरी में कहा औलाद का कत्ल मत करना भूख के डर से। अगर भूख का डर होना, इसका मतलब है अभी भूख नहीं लगी, अभी इमलाक नहीं हुआ, अभी फाके नहीं पड़े। सोच ये आ रही है कि बच्चा होगा तो पता नहीं पैम्पर के कितने पैसे होंगे, पाउडर के कितने पैसे होंगे, डॉक्टर के कितने पैसे होंगे, यू नो डिलीवरी के कितने पैसे होंगे, खाने के कितने पैसे, खर्चे ही खर्चे। फिर बाद में कपड़े लेने पड़ेंगे, फिर ये करना पड़ेगा। अभी नहीं हुआ फाका, लेकिन डर है उसके होने का। यानी आपका रिस्क का मामला ये नहीं है कि आप अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके जहन में सारा मसला आपसे मुतालिक नहीं है, बच्चे से मुतालिक है। तो अल्लाह ने कह दिया डर के मारे मत कत्ल करना, हम उसको भी देंगे तुम्हें भी देंगे। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, अजब हादल कलाम। फिर मैं याद दिला रहा हूं वही बात पुरानी। एक आयत है सूरतुल अनआम में, दूसरी है सूरतुल इसरा में। हजारों मील के फासले पे किसके जहन में होगा, यहाँ पे मिन है तो इसको ऐसे करो, इसको यहाँ पर खशिया है तो उसको वैसे। कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है? इसको समझने के लिए थोड़ा मैंने हाईलाइट नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या बात हो रही है। आपने बहुत मशहूर आयत है बकरा की, आपने पहले सुनी होगी, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, उनके दिलों पर मोहर लगाई, फिर उनकी समाज पर मोहर लगाई, और फिर उनके देखने पर एक गिशावा है, यानी एक ढकाव ढकनी है, ढकोनी है उसके ऊपर, ओके, वो ढकी हुई है। अच्छा, यहां देखें सूरत अल-जासिया, अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, तुमने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को इलाह बना लिया हो? वह अदल्लाहुल्लाहु अला इल्मिन, और अल्लाह ने उसको गुमराह होने दिया हो उसके इल्म होने के बावजूद, उसके पास इल्म भी है फिर भी गुमराही में गया। वह ख़त्म अला समईही व कल्बिही, और अल्लाह ताला ने उसके सुनने पर और उसके दिल पर मोहर लगा दी। बकरा में क्या पढ़ा था? ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला, यहां पर तर्तीब बदली कि नहीं? क्या बदला है? पहले किसका जिक्र है यहां? समात का, फिर दिल का, फिर आखिर में, जैसे वहां भी आखिर में देखना था, वो तो आखिर की बात है, लेकिन यहां पर तर्तीब बदल दी। अब वापस आते हैं बकरा पे। بقرہ کے شروع کی آیت تو بہت سالوں کو یاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب، شک، شک کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، فیہ ہدن، ہدن، شک کیسے دل میں ہوتا ہے، کیسے پتہ دل میں ہوتا ہے؟ وارتابت قلوبہم، قرآن کہتا ہے ان کے دل شکوں میں تھے. پھر کہتے ہیں ہدن للمتقین، ہدن، ہدا کہاں ہوتی ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت دل میں ہوتی ہے. پھر کہا ہدن للمتقین، المتقین، فَإِنَّ ذَلِكَ مِن تَقْوَى القلوب، تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. رسول بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. الذین یؤمنون بالغیب، الذین ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یقین کہاں ہوتا ہے؟ یقینون، یقین کہاں ہوتا ہے؟ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا، کفر کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی دل میں ہوتا ہے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اچھا، ساری بات شروع سے بقرہ کے دل، پھر دل، پھر دل، پھر دل، پھر دل، پھر یہ آیت آتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم. تناسب ہے کلام کے ساتھ، مضمون کیا تھا، ہر لفظ کے اندر، ہر دوسرے تیسرے لفظ کے اندر دل کی بات ہو رہی تھی، تو سزا کہاں ملی؟ جرم بھی دل کا ہے تو سزا بھی دل کو پہلے ملی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم، بات سمجھ میں آئی؟ اب چلتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے پاس. سورۃ الجاثیہ کی آیا نمبر، جس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے وہ آیت نمبر ہے 23. شروع میں جاتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے. سورۃ الجاثیہ کے شروع میں نا مختلف قسم کے جرائم کا ذکر ہے، اور میں سے سب سے بڑا جرم یہ ہے جس کا 8ویں آیت میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو پڑھی جاتی ہیں اس پر. ثم یصر مستکبرا، پھر سننے کے بعد وہ مڑ جاتا ہے استکبار میں، تکبر میں. کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو. فبشره بعذاب علیم، تو اس کو خوشخبری دے دیجئے تکلیف دینے والے عذاب کی. جرم یہاں دل کا ہے یا جرم نہ سننے کا ہے؟ نہ سننے کا ہے. کون سی آیت میں؟ نمبر میں نے لکھا ہوا اوپر، کون سی آیت میں؟ 8ویں آیت میں. 15 آیات کے بعد، 15 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے کان پر ختم علی سمعی و قلبی وجعل علی بصری غشاوا. سننے کا ذکر پہلے، کیونکہ یہاں اصل جرم سننے والا تھا. اب اندازہ کرو کہاں سے کہاں بات کو جوڑا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ اس کے فوراً بعد آ رہی ہے، 15 آیات بعد وہ بات آ رہی ہے، اور وہاں بھی اس طرح کا تناسب، اس طرح کا کلام. تو یہ چیزیں ہیں جو جب ہم چھوٹی چھوٹی ترتیب پر بھی ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے. چلو، آپ کا سیشن کافی لمبا ہو گیا، آپ کو میں پہلی بریک دیتا ہوں.
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: Mera ek purana dost tha, uska business acha chal raha tha, uska ek client tha, wo usko har jume 12:30 baje, 1 baje namaz hai jume ki, 12:30 سے 1 بجے کے درمیان اس کو وہ 1 گھنٹے کی کال کرتا تھا بڑے بڑے آرڈرز دینے کے لیے. ہر جمعے اس نے اسی ٹائم پہ کال کر دی، اور ہر جمعے وہ اسے بتاتا تھا یہ میری نماز کا ٹائم ہے، نماز کے بعد بات کریں گے. وہ کہتا ہے او ٹھیک ہے، اگلے جمعے کس ٹائم کال کرے گا؟
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Bismillah. Two simple words, filled with blessings. Before you begin your work, your studies, your journey, or your new meal, remember Allah and say Bismillah. Start with His name and seek His barakah. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. The signs of an ignorant person.
6: Abu Darda radiyallahu anhu said, "The signs of the ignorant one are three: self-conceit, much talk in that which does not concern him, and forbidding others from something that he himself commits."
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahi rahman rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, "Inna al-ghadaba yufsidu al-imana kama yufsidu as-sabr al-asal." That anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
10: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
11: Join Imam Waz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
10: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
12: Every Friday at 5 p.m.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
14: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
15: Good morning and assalamu alaikum. You are tuned into Inspire FM 105.1 FM. It's Friday, 17th of July, and the time has now just gone 10 o'clock. Welcome to Mother's Planet, a show where there is always something to talk about in a productive and beneficial way. I am your host, Neelam, and hopefully joining me on my show this morning is my guest, Nazmin. We are joining remotely, so I'll allow Nazmin to just connect with me. It's a beautiful day this morning. We've got lovely sunshine, and it's the last day of term. This is a new way that we are airing the show for myself. I normally do it from the studio or something different. And Nazmin, you are on mute, so I don't know if you can hear me, but you just need to unmute yourself. And then hopefully you should be able to tune in and hear what's going on the show. but for now, listeners, while I wait for Nazmin to join me, it's been a very busy last few weeks. We've had the school trying to squeeze everything in that's possible in these last few precious weeks of school. We've had sports day, assemblies, performances, award assemblies, trips. It's been quite a roller coaster, and it's actually made me definitely look forward to the summer break, because I feel like I need to switch off and I need to enjoy this summer break. So, and also for some children, like my son, it's also quite an emotional journey. As they bid farewell to their primary school and teachers. So, you know, having spent the last 6 to 7 years in their primary school to now joining high school, it's going to be a huge change. So across the nation, many schools today are going to be breaking up. So we are going to have children are having their last day of summer today. And I did want to ask Nazmin if she is looking forward to the summer break, how she feels about the summer break. So just until I wait for Nazmin to join listeners, Assalamu alaikum, Nazmin, how are you?
16: Walaikum salam, I'm good. So I was trying to find a safe spot to have this conversation, but I haven't found one. So you're just going to have to excuse me. I'm going to have to sit on the floor because I'm doing some housework. Oh. And the house is an absolute pile of rubble at the moment. So,
15: Assalamualaikum. Walaikum salam. So lovely to see you. It's always so nice to see your fresh face, Nazmin. You're always housework. Can you come to mine after you've done yours?
16: No way. I'm going into hibernation once this is done.
15: You know, once you start it, you kind of like have to go with it, which is what's the hardest thing.
16: I know. It's a total can of worms. You open one thing. Sorry, I'm just trying to get this.
15: That's it. Perfect. I can see you. Yes, I can see you now.
16: Yeah. Hi.
15: Yes, so I was just saying for a lot of the schools, it's last day today across the nation. I know some schools, especially my nephews and nieces in London, they're continuing till I think mid next week. So, but I think majority of the schools in Luton are finishing today. And Nazmin, are you looking forward to the summer break with the kids?
16: Do you know what? I would normally say no. Mm-hmm. I would normally be like, 6 weeks. But this time around, we've done a lot of housework. We've had a lot of stuff done, and we're actually really looking forward to this break now. So we've planned a lot of fun stuff to do.
15: Okay, good. So you're going to assign chores to the kids, and you're going to basically tell them how to kit the house out.
16: That's right. You got it.
15: Yeah, absolutely. You know, and so that's the way it should be. So, listeners, we are live on air, reaching out to you through the airwaves at Inspire FM 105.1 FM. Let me get my words right. We are also available on DAB Radio, reaching out a wider range of audiences. And the show is also being streamed live on Facebook, where you must give the show a thumbs up. And you can also comment around today's topic. And as always, I am taking in WhatsApp and text messages on the studio number 0777-9481-822. So if you have anything that you'd like to share with us, tell us about how you feel about the summer break, what you're going to be doing during the summer break, then please do ping me a WhatsApp or text message on that number. Now, in today's show, Nazmin and I are going to be sharing some great ideas around how to make the summer holidays go swiftly. I think that's where everyone so I'm having high expectations. No pressure, Nazmin. There's you know, lots that we're expecting from you, but we want the summer to go smoothly. I think I'm not alone in this. And just now, just before I went live on air, I was talking to my husband and he said, what's your show about? And I said, oh, I'm talking about making the most of summer. And he said, can we make the most of summer? Because every summer holiday that's gone by, it's a rat race trying to keep up with things. And then before you know it, they're back to school and you look back and you think, what did I actually do? Where did we actually go? And where did the time go? So I really want to make the most of it. I was, just before I start, Nazmin, and get you to introduce yourself to the listeners, I wanted to share something a really good friend of mine was telling me that her husband's done for the first time this year. Usually, she says, he takes a couple of weeks off in the summer so that they can go away, do something. So he's got 2 weeks off and he's dedicated that time to be with the family. And she said this year, to try and make things a bit different and make it feel like he's really there, he's taken every Friday and Monday off. So they've got a nice long weekend. So they are going, and she's booked the next 3 weeks. She's booked something. So they're going to like Cotswold, they're going to Norfolk, and they leave like Thursday evening because he's finished work. And they're back either Sunday night or first thing Monday. So they've got that day to chill out as well. And I thought that was such a good idea. I thought, wow, it's a handy idea. So I did come back and put pressure on my husband to do the same. I said, right, you need to take every Friday and Monday off, and we need to make sure that we're doing something every weekend, because that is the crucial time. That's, you know, when everyone's a bit more relaxed as well over the weekend and more available. So again, if you want to see family members, it's quite a nice time to do it during that weekend. Without further ado, Nazmin, I did send you a list of questions, but I'm not sure if you had the chance to even...
16: Oh, did you? Oh, really?
15: Yeah, I did. I tried to be organised. Yeah, I try. But I'm not sure you had access to it or you...
16: It's okay. I will do my best.
15: Yes. So can I get you to introduce yourself to the listeners?
16: Hi, I'm Nazmin. Some of you may know me, some of you may not know me. I am a local mother of three absolutely amazing young little children when they want to be. I am quite active within the community. I like to do as much as I can to help when it comes to local projects, when it comes to charity. I am actually going to be undertaking some training and education qualifications in September. So I'm turning a new leaf and I'm looking to go into teaching.
15: Wow.
16: So, yeah. So I've had it might be a midlife crisis. I'm not quite sure, but I guess we'll find out in September. Yeah. But looking forward to that, going back to college in September.
15: Oh, nice.
16: To gain some extra qualifications. And that's me. That's me in a nutshell.
15: So just to sort of dig into that a little bit more, what will you be doing, primary level or secondary?
16: So it's actually, it's just across the board qualification. So it's a training and education AET qualification, mm-hmm. Which you can pack up and take to any country. Mm-hmm. And it's quite a wider scale qualification, so it doesn't actually box you into any specific area.
15: Okay.
16: I mean, long term, I wanted to open a training academy, so this is kind of the first stepping stone for that. Mm-hmm. I'm not quite sure.
15: I don't know what's happening with it. Maybe we're having a bit of technical glitches with Nazmin's Wi-Fi or internet there. So she is there in the background. We just have to bear with her trying to connect. Nazmin's introduced herself. We are talking this morning about summer holidays and things to do. Now, I did kick off the show with saying that we are going to be sharing some top tips around things to do. And I try to look at ideas and things that we can do that would be free, fun and cheap. So it doesn't have to put you out of pocket, because we have to remember it is a long break and you don't want to be spending so much money during this break. So I've put down a few little notes of what you can do. This is like having a picnic in the park. So you can get together with a few friends this could be picking a handful of friends from your children's group and asking them to bring a friend along and going to a local park and having some food. Get the kids involved, make the sandwiches, make the wraps, get them involved in preparing things for the picnic, take a football. A football will go a long way. You can have kids, any gender, playing football for a very long time. So this can be enjoyed by all children of all ages. I've had my teens kick a football around and I've looked up at my watch and I'm thinking, wow, it's been 2 hours and they've been playing on the grounds with their football and they're not bored. So of any age and of any gender, we can have them doing that. Or you can just simply relax outdoors. You can get one of those fold-up badminton sets now where it all comes in a little case and you open it up and you get a little pop-up net and you can play badminton. All you need is a shuttlecock and you are away. You're playing your badminton. So there's that. There is a lot of fruit picking farms local to Luton, just outside of Luton actually, if you stretch into Hitchin and Offaly in those areas. We've got some really nice farms that you can go and do strawberry picking. We've got the lavender fields where you can pick fresh lavender. And they actually have really nice stalls set up where they show you things that you can do. So they've got samples of things that you can do with the lavender. And one of my favorite ones was